0: ना तुम से
1: या बिग डबल आई 90.7 रेडियो रागुन लगास्वी जैगल टिक टैक बेली अबाउट 5 मिनट्स बिफोर अलसिंको ओइला लाइ सो मुना पन समंतला हा पेरो प्रॉमिस अगेन टुमारो अलस शेते तामा ओ पासो दिया 7 o'clock पर इन द मॉर्निंग ना दीतो ना हो पर सलवा दुदु नंग रागुन बिकोल नंग अको बिकोल पार्टी लिस्ट विद ऑफ कोर्स फायरफ्लाई विंटर सैडी लूजर्स इन द मीन टाइम सिगबो मा पते लापी ता लापी ता लापी ता लापी ता लापी ता Dikit tapi yung mga labi at bisging sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang. Pinaka-mimiti! At ang sabi nga ni Lola.
2: Sana ako.
1: Pinaka-asyam-asyam. Walang iba. Ang Kiss. Ang Kiss. Sabay. Sabay. Maraming salamat po. You have a beautiful Friday night ahead of you.